0: नागरिक एफएम 107.5 MHz वॉइस ऑफ द पीपल।
1: नागरिक ट्रान्सिट
2: अहिले बिहानको 11 बज्यो।
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक गोल्डन चिया।

0: पूजा ज्वेलर्स। सम्पर्क प्रोप्राइटर धर्मेन्द्र शाह, पूजा ज्वेलर्स, भद्रपुर 5, भद्रपुर बजार। सम्पर्क नम्बर 98526 77 880, 98079 24076।
1: You've been listening to Voice of the People with the hottest DJ 107.5 MHz.

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक ट्रैक
2: अहिले अपराह्न 5 बज्यो
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक गोल्ड रिंग चिया

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक टाइम्स से
2: अहिले साँझको 5:30 बजे हो।
3: नागरिक बुलेटिनको साथमा गोल्ड रिङ चिया

25 वर्ष देखेको अटुट विश्वास, हरेक घुटमा मिठो सुवास, त्रिशक्ति टी इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन गोल्ड रिंग सिया।

0: नागरिक एफएम 107.5 MHz वॉइस ऑफ द पीपल।
1: नागरिक टाइम चेक
2: अहिले साँझको 7 बज्यो। यस टाइम चेकका प्रायोजक गोल्ड रिङ चिया।

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक टाइम स्टेट
2: अहिले बिहानको 5:30 बज्यो। नागरिक बुलेटिनको साथमा गोल्ड रिंग चिया।